0: संत का दुखी को उद्यान पर माये,
1: संत का दुखी उजड़ पाइये,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सास बिना व्यर्थ की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किस नाहे,
1: अपन बीजा पे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवन रखन हार,
1: नानक संत पावे ता ले वार,
0: संत का दुखी ओम बिल्लाए,
1: जो जल बिनो मछली तड़पड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पाव की धन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी

0: आठ पैर प्रभ से हजूरे
1: कह नानक से ही जन पूरे
0: मन मेरे तन की ओट ले
1: मन तने अपना तिन जन दे
0: जन जन अपना

0: जब निर्गुण प्रभ सहज सभाए
1: तब से सतगुण के मिठाए
0: जब आपे आप अपने ज्योत रहे
1: तब कवन निडर कवन कत डरे
0: अपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकर आगम पार
0: अविनाशी सुख अपन आसन
1: तें जन्म रंको कहां विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जन की त्रास कहो किस होए
0: अवगत गोचर प्रभ एका
1: तब चित्र गोचर किस

गावणं तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माच पयाले गावण तुदनो रतनो पाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गावण तुदनो जोध महाबल सूरा गावण तुदनो खाणी चारे

कर जनसी माया जिनु पाई, कर कर देखा किता आपना ज्यों तिस दी वड्याई, जो तिस भाव

सपर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाना, घट घट गे बट पट की जाना, जब दर्क करा करतार, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आ करख कर तो हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन सृठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार।

को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत न पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पुप्पा अंडज जेरज सेतज किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दिन्नी कहूँ फूल राजा हव बैठा कहूँ सिमट भयो संक्री कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप सियंभव अपृच्छा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु जिताव शारणी परे तिन हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छ

ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भागवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंग तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे बात एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद गहे हमें कना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे सब तुहे बखान्यो दोहरा

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई आय। जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आय। करुणा नि दया बहताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारिया चौं साहबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जरा नाम जपिया बन छकिया। देख चलाई देख वाही देख अनुरगिता दरा प्यारिया सचियारे ने कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिना सिंह सिंगणिया ने धर्मे सीस दिते बंद बंद कटवाए। कपड़िया लोहियां चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया की सेवा लिया कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी के सांस वासा संघ निभाई तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया का ध्यान करके बोलो जी।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी अते मीडिया दे राही आपो अपने घर घर ही अपने कार विहार ते गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप सारे ही वड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां जी दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच नित्ता प्रति सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वह विचार आपां सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेड़ा शब्द विचाराधीन है वो पावन शब्द आसा राग विच सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन रसना तो उच्चारण किया होया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 414 उत्ते सुशोभित है। आपां जो उस शब्द विच विचार कर चुके हाँ जो रहाउ तो अगला पदा है उसकी एक तुक आपां कल विचार चुके हाँ जिस दे विच सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी समझाउंदे ने अहनिस निर्मल थान सुथान। अहनिस दिन रात अन दिन हरेक रोज ते गुरदेव समझा रहे ने भी जिहड़े गुरु दी शरण विच आ जांदे ने जिहड़े गुरु नूं मुख रख के अपना जीवन बतीत करदे ने ओ अपने हिरदे नूं ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਇਸ ਸਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵਸਤਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਮਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ 'ਤੇ।

मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु।

आद गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेह तन माहि मिटावो, सिमरो जाओ विसंपरे कै नाम जपते अगंते अनेक, वेद प्राण सिमरत सोदा अखियर कीने, राम नाम एक अखियर।

हे उदारो सुख मनि सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम रहाउ प्रभु कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै प्रभु कै सिमरन काल परहरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभु सिमरत काश विघ्न लागै प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै

सिमरै बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कभवन झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन देह चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल बिंगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरहै से जन जन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लाग बेदी उपाए हर सिमरन पै सिद्ध जती दाते हर सिमरन नीच जहु कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मह आप निंकार कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया सलोक।

अंतर जामी अपनी गद में जान हो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कबर न जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया

लेहो और निभावे कहा बुझारत बूझे डोरा निस कही है तब समझे पूरा कहा विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तौ पी सुर भंग।

क्रोध विकराल मिथ्या राथ हती असब अतरा मिथ्या रंग संग माया पेखस्तव मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या शिव प्रकृत गुमान आस्थिर भगत साध की शरण नानक जाप जाप जीवे हर के चरण।

तह राम स्नेहि, जेह प्रसाद रहुला रहतह मन सुख पावह। हर हर जस कहत जेह प्रसाद रे सगल छिद्र ढाकै, मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता कै। जेह प्रसाद रे को न पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभुचे। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। जेह प्रसाद

परोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मान बंत बनाई उठत बैठत साध तिसह त्याई तिसह त्याय जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रख है जिह प्रसाद करहे पुन बवदान मान आठ पैर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू विचार ब्योहारी तस प्रभु को साह साह चितारी जिह

साधक संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै गुरबाणी।

करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम नानक, साध कै संग सफल जनम, साध के संग नहीं कछ काल दर्शन, साध के संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल,

ब्रह्म ज्ञानी एक संघ हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंद ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभया ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई ब्रह्म ज्ञानी काओ बाल बाल जाइए ब्रह्म ज्ञानी काओ खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी काओ सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कैसे न जाय आख्यर।

ज्ञान गुराम ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक उतार जो अंतर नाम सर्व मह पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानको अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मान मह प्रीत निरंजन दर्श पारत्र्य।

सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जाग कै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृहित सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष भाव है सो वृतिया विस्म बन विस्म

न जानो। आठ पहर प्रभ बसे झूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओडले हे मन तने अपना तिन जन देह जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके धरस सब पाप मिटावे अवर सियान सगली चाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पैरा सलोग सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाव तिस कै संग से खुदरै नान कर गुण गाओ अष्टपति सात गुर सिह की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिह की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिह के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिह कौ नाम तन दे गुर का सिख उड़ भागी हे सतगुर सिह का हालत पलत सुवारे

ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जनमे पार ब्रह्म एक आव नहीं कह भरम सहस सियान पलायन जाइए नानक ऐसा गुर बिड़भागी पाइये सफल दर्शन पेख तुपनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेड़ संग राम गुरु रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे

व्यापारी दरगह निभ है। खेप तुम्हारी एक अनेक रखो मन माए नानक बहु न आवे जाए ते ते दूर कहाँ को जाय बराय राख निहार ते आय निर पाओ जा पै सगल पाओ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टाए।

सुखमनी सब ते उजता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक वसी पी सच सोचाए सोच न हो भई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो भई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार

थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक भिक्षे विप्रवाह, साचा साहेब साच नाए, पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे देहे देहे दात, करे दातार, फेर के अगे रखिया जित दिसै दरबार, महाओं के वर्ण बोलिया जिस सुन तरे प्यार।

मन को है। पांच परवान पांच प्रधान पंचे पामे दर्गे मान पंचे सोहे दर्राजान पंचा का गुर एकतयान

निरंकार तू सदा सलापत निरंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लोह असंख है सरपार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुन गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जे फुरमाए तिव

वैसाई परिकार तू सदा सलामत निरंकार पर यह हाथ पैर तन देहे पानी धोते उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुण लइए ओ तोए पर यह मत पापा कै संग ओ तो पै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीजा पे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो तीर्थ तप दया दतदान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल लाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आदि बाणी बरमाओ सत सुहान मद सदा मन चाओ कमण सो वेला वखत कमण कमण तित

ऊंचा होवे कोहे तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए।

गावन पंडित पंडर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन बाहे तेरे अड़ छड़ तीर्थ नाले गावे जोत महा बलसूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल पर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जनसी माया जन उपाई कर कर वेख्या कीता आपना जिव तिस दी वडिया।

जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत वे आई, तीन चेले परवान, एक संसार एक भंडार, एक लाए दीवान, जिवत सभावे तवे चलावे, जिव होवे फुरमान, ओ वेखे ओना नदर न आवे, भवता एहो विडान, आदेश तसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका बार, कर कर वेखे सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लखो है, लख होवे लख वीस, लख लागेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, एतराह पत पवड़िया, चढ़िया होए इकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है,

वसय मन माहे तथा भक्त वसे के लोवा करहे आनंद सच्चा मन सोय साच खंड वसय निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तथा खंड मंडल ब्रपंड जे को कथे ता अंत न अंत तथा लो अलो आकार जिव जिव हुकम तबा तिवकार वेख

अपेक है, अनाम है, अकाम है, अते है, अभे है, अजीत है, अभीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अजूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, नरबूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लम्ब है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अलू अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, उजंग प्रयात छंद, नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेक्षी अभेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नृसंगी परमाते, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भादे, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ती विभूते, कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र बाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अपरे देव सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाहंग, नमो पुपुपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संग सनाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धता बुद्धता बृहदकर्ता अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता, परंग परंग परमेश्वरंग प्रोष पालंग, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग, अशेद्य भेदीय नामंग अकामंग, समस्तो पराजी समस्तस्तामंग, तेरा जोर चाचरी छंद, जले है, थले है, अपीत है, अपे है, प्रभु है, अजू है, आदेश है, पेश है, पुजंग प्रयाद छंद, अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ते निधाने, नमास्तवंद्रनाथे, नमास्तवंग परमाते, नमास्तवंग अगंजे, नमास्तवंग अपंजे, नमास्तवंग अकाले, नमास्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वेशे, नमो राजराजे, नमो साजे, नमो शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सुख सुखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परम दानंग, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृश्यं, नमो सर्वकृसं, नमो सर्वरंगे दर्भंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिज्जे अभिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे गुगर्भं प्रणासी, सदा सदा सर्वदा हृदसिदं निवासी, चरपट छंद त्वप्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग आलाक कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद, आद रूपन आद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रमान देव अभेव आद उदाहर, सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर तथर विराजहि, अवधूत रूप रे सार नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख, आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख दे सौर न पेश पेश जाकर रूप रेख ना राग, जतर तथर दिशा विशा हुए फैलो अनुराग, नाम काम भीन पेख तामू न जाय सर्वान सर्वतर्मान सदैव मान ताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन की नूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, दे पेवना जा नहीं जे वेद और कथेब रूप रंग।

देव अनाद मूर्त थापे सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गर्ण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत भूत लख भेस अंगरागना रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुगदायब काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख भूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग अनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्वकायक सर्वगोब्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्वते अनभेख सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नेत कोट सीमृत पुराण शास्त्र।

है, अंत है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, नाश है, प्रकाश है, निचंत है, सुनंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद द्वाप्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग, सर्वंग तरानंग, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग धर्मंग, सर्वंग जुगता, सर्वंग मुक्ता, रसाबल छंद द्वाप्रसाद, नमो नर्कनाशे सदैवंग प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमातंग परमाते सदा सर्व साथे अगा सुरपेन्द्र बाद विभूते अनंगी अनामे त्रभंगी त्रगामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपेन पोत्रेण पुत्रेण सत्रेण मित्रेण तातेन मातेन जातर पात नृसाकं श्रीक मित्तोमीक सदैवंग प्रवाह अजाह अजाह भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समसुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहंद है के राजक रहिंद है गरीमुल कमाल है के सुनल जमाल है गरीमुल खराज है गरीबुल निवाज है रिफुल शिकन है हरासुल फिकन है कलंकंग प्रनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गरीम जाय कर ही मैं समस्तुल सुबह है के साहिब ग्राह के नरकंग प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वगुल गबन है मेसुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीश है समस्तुल अदीस है देसुल अलेख है बहसुल अभेख है जमीन जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के सुनल जमाल है के अचलंग प्रकाश के मित्तो सुभाष के आज स्वरूप के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग के मित्तो अभंग है मदभार शांत त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदा मे हर भर अगंज हर नर प्रभंज अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अन भव अनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस्वस अपंड जल थल महंत दिस्वस बेअंत अन भव अनास त्रितर तुरास आ जान बाहु एक सुदाह ओंकार आद कथनिया नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल कर कर प्रणाम चित चर नाम अंश जगात अजना बात अन चंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ तर अत ठीठ कर्म अन बरन आनंद दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरन है जग के कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपा अजप है थपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणाकृत है अकृता कृत है धरणी तृत है मतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा करते हैं अमृता आमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्पनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अगला करते हैं सर्वा करते हैं कर्ता कर है हरता है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राज नमो इंद्र इंद्रे नमो अंध कार्य नमो तेज तेज नमो नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सांद्रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय आदंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकाले अनंगी अकामे अजाय अलाय एक श्री शांत अजाय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अगाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्कामंग विभूते समसल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतरमंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग

वाराणसी करिमल कुनिंदा समस्त निवासी अजायब भूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चतुर जगर वर्ती चतुर जगर भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते चतुर जगर वर्ती चतुर जगर भुगते

हूँ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चौन चौन शत्रु हमारे मारिया है। आप हाथ है मुझे उभरया, मरण काल का त्रासन भरया। उजो सदा हमारे पच्छा, श्री सज्जू गृहो रक्षा। राख लियो मैं राखण हारे, साहिब संसाए ब्यारे। दीन बंदुष्ण के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश घंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का

सोई गुरु समझेव हमारा, नमस्कार सी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सत्रन को बलमो बद कियो, घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते गुंजर सूला, सफर किरे पा दुष्ट कर फूला,

सगरीषष्टिधिघाय अचम्बव्याजुगादस्वरूपस्यम्बव अपरच्छामेरीतुं करो सिखुबार सिखसङ्गरो दुष्टजते उठवत उत्पाता सकलमलेश करो रणकाता जे आसतो जताव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाए ने हर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाय दुष्ट दोखते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केलविक सगल दे को हरता दुष्ट दुखीन को शय करता।

चौपाई संबत 1700 अर्ध सहसुन तेन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रबवारा तीर सद्रव ग्रं सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते गौ आंक तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण गुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद गए हम एक ना जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो।

मूर्ख पंडित हिकमत उजित संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मुख द्वार, जति सदा वह जुग न जाने छठ बह करवार, सबको पूरा आपे हुए घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है, ता नानक तोलिया जापे महला पहला।

वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद होए सचार पढ़ है गुण तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदा तो नानक मुख अंतर।

खूब करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक कावे सेवक वर्ता कर कर बिनो बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे तियाई

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही टीवी चैनल राही अपने घर अपने कार विहार से गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप सारे ही वड़भागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमारी बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रही हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपां कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया ओ पावन शब्द चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास पिता जी दी पावन रचना तो उच्चारण किया होया सोही राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 757 758 उत्ते सुशोभित है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सब तो पहला जो सूखम रूप विच मूल मंत्र है छोटे रूप विच मूल मंत्र है उसका जिक्र किया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमात्मा एक है वो सारे संसार विच एक रस व्यापक है वो सारे संसार की कार चला रहा है भाव सारे संसार नूं संभालदा पिया है। एवजी समर्था वाला परमात्मा सतगुरु की कृपा नाल मिल सकता है होर कोई तरीका नहीं। एवजी समर्था वाला परमात्मा गुरु की कृपा नाल मिलता है। फिर इस पावन शब्द विच सतगुरां ने जो राहों दा बंद बख्शिया

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दे आवे ताए सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ नार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमजठ कीता। तिना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया। धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सुआसा संघ निभाया तिना समूह शहीदा की कमाई का ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिसमय सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नहीं वा मत उची मत पद दे रख आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दितार जियो। श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेवटियां दी उड़ने आसरियां दे आसरा धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां दे प्रकाश मन के दर्शन दीदार बख्शे आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहिब जी दे जाप पंज बणियां दे नेतने मासा जी दी वार दे कीर्तन होए उपरंत आप जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा विचार गुरमत विचारां छेव पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप होया। कृपा करनी पातशाह जी समुचियां सेवावां निभाउंदिया होया भुल चुक दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईयां संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां धरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी आप जीआं दे भाणे विच रहिण सुखां नाल बतीत होई आया दिन आप दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमन करदिआं बतीत होवे बख्शां खजानिआं विचों कड़ा प्रशादी देख सज के हाजर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुण लाव भोग हर राय आप जी दा सीध प्रशाद ज्यों छके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिना मिले आम दा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु को मिल बोच है।

न पाया सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तो दियो पाए एक वेख प्रसन्न आया लाभ लोभ अहंकार चुका सत गुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिख मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्ने ओ तिखी वालो निकी इत मार्ग जाना गुर प्रसाद जिनी आप तजे हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलावह ज्यो तू चलाएह तिव चलह स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाएह तिव चलह जिन्ना मार्ग पावह कर कृपा जिन नाम लाएह से हर हर सदा त्यावह जिसनु कथा सुनाएह अपनी से गुरुद्वारे सुख पावह कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवे चलावे इहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया ए तिनके मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया एक फिरे कनेरे करह गल्ला गली किने न पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए सिजना जिनी हर तिहाया हर तिहाया पवित होए गुरमुख जिनी तिहाया पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सवाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर तिहाया करमी सहज न उपजै विण सहजै सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संजम रह कर्म कमाए सहसा जीव मलीन है के संजम तोता जाए मन तोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जियो मैले बारहो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जूए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जियो बिता लिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जूए हारिया जियो निर्मल बारहो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोय पहुँचे नाही मनसा सत समाणी।

जिन हर पल पाए, हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा जानी, हर हर नित जपियो जियो, लहा खट हो दिहाड़ी, ए तन तिना मिलिया जिन हर आपे पहना, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा, ए रसना तू अन रस रात रही, तेरी प्यास न जाए होरत किते, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बहोड़ न तृष्णा लागे आए, ए हर रस करमी पाई है, सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए।

क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सु हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं जोत तरी, हर बिन अवरना देखो कोई।

प्रगट किए। दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारा लै पावनी, एक न दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नव निध, जिस दा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो, गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। इहो सचा सोहिला सच कर गावो, गावो तां सोहिला कर सच है। जिथे सदा सच त्यावहे, सचो त्यावै जा तुद पावे। गुरमुख जिना बुझावे इस सब, ये सच सबना का खसम है। जिस बख्शे सो जन

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याही है, जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निधि आवे ताहे, सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत,

0: प्रभु न चूरे
1: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी
0: प्रभु के सिमरन सहज समानी
1: प्रभु के सिमरन निश्चल आसन
0: प्रभु के सिमरन कमल भगासन
1: प्रभु के सिमरन

0: सुख घनेरे
1: सगल सृष्टि को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: करोरी बंधन पर
0: हर का नाम जपत ने सरे
1: अनक माया रंग

0: साधन
1: निम्क निम्क कर शरीर कटावे
0: तो भी हमें मैल न जावे
1: हर के नाम संसार कछ न है
0: नान गुरमुख नाम जपत गत पाए
1: मन कामना

0: राष्ट्रपति
1: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए
0: तेसा कर को रख मन माए
1: जय प्रसाद सुगंध धन लावे
0: तेसको सिमरत परम गत पावे
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
0: तेसे ते आए सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद गृह संग सुख बसना।

0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग यहाँ सोहेला,
1: साध संग बिचरत हर मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग ना बिरथा जावे,
0: पार ब्रह्म साध रत बसे,
1: नानक उतरे साध सुन रसे,

0: रस भोगी।
1: कई कोड पंखी सरपो पाए,
0: कई कोड पाथर बिरख ने बचाए,
1: कई कोड पौन पानी में संतर,
0: कई कोड देश भू मंडल,
1: कई कोड ससियर सूर नखतर,
0: कई कोड देव दानव इंद्र सिर शतर,
1: सुर समग्री अप